जुल्म रहाओगे और मैं आखिरी सांस तक हर गिज इस मुकद्दस दीन को नहीं छोड़ूंगा। आपके चाचा ने जब आपके इस अजम को देखा, इस इस्तकामत को देखा, इस्तकराल को देखा, वो हैरान रह गया और आपको रिहा कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो साहिबुल हिजरतैन के लकब से भी मशहूर हैं, क्योंकि आप रदी अल्लाह तआला अन्हो ने दो मरतबा हिजरत फरमाई। एक मरतबा आपने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ हिजरत फरमाई और दूसरी मरतबा मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई। जब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो हबशा की तरफ हिजरत फरमा करके रवाना हुए तो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु हजरत उस्मान गनी की मदद फरमाए, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उस्मान गनी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने घर वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में हिजरत फरमाई। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो को इल्म के एतबार से, जोहद के एतबार से, तकवा के एतबार से, इबादत के एतबार से, सहावत के एतबार से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के एतबार से सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन में एक खुसूसी इम्तियाज, खुसूसी शान और खुसूसी मकाम हासिल था। आप हाफिजुल कुरान थे और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत का ज़ौक व शौक, जज्बा इस कदर गालिब था, कुरान के साथ आपकी मोहब्बत इतनी दीदनी थी कि दिन रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत में मशगूल और मसरूफ रहते। इसलिए आपकी ज़ात अक़दस पर कुरानी उलूम के खजाने तवातर के साथ मुनकशिफ होते रहते थे। आप पैकर हया और इंतहाई शर्मीले सहाबी थे। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो की हया का यह आलम है, शर्म का यह आलम है, फरिश्ते भी आपसे हया फरमाते थे, अका अलैहि सलातु वसलाम भी आपसे हया फरमाते थे, उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका बिनत सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अका अलैहि सलातु वसलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे, बदन मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, जिस्म मुबारक का रान मुबारक नंगी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत होने की इजाज़त चाही। आप फरमाती हैं आपको इजाज़त दी गई, मेरे वालिद मोहतरम अंदर तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत में, कैफियत में किसी किस्म की तब्दीली वाकया नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु

0: ये है कि मुझे ऐसी मैनिपुलेटिव ड्रामेबाज चालाक गेमर दुनिया को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ में डील ही नहीं करता। तो जब मैं एक चीज़ में डील ही नहीं करता तो मुझे इस बारे में क्यों सोचना है? मैं क्यों ये सोचूं कि ये जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है पागल हुई जा रही है, जब मैं स्टॉक मार्केट मार्केट में हुई नहीं, जब मैं दो नंबर के धंधे में हुई नहीं तो दो नंबर लोग क्या कर रहे हैं? व्हाई वुड आई बी वरीड अबाउट इट? दो नंबर लोग क्या कर सकते हैं मेरा, मैं क्यों टेंशन लूँ उनकी? क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ना, मैं उस मामले में हूँ। मैं अपने तरीके से अपनी चीज़ों को डील सही करके रखूँगा ताकि जब भी दो नंबरी का और ये गेम हमारे साथ टकराए तो उसको पता लग जाए देयर इज़ नथिंग मच टू डू। तो इन चीज़ों को ऐसे देखना और सोचना और समझना जब आप शुरू करेंगे ना, तो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ना, ये दुनिया कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बंदा कुछ बिगाड़ सकता है, वो आप खुद हैं। और दूसरा जो आपका बिगाड़ सकता है वो आपका बिगाड़ना नहीं चाहता, वो रब की ज़ात है, वो कोई चीज़ नहीं बिगाड़ेगी। आपकी जब सेहत ख़राब होती है तो वो नहीं बिगाड़ रहा आपकी सेहत, हम चीज़ों को डिफरेंटली डील करते हैं। दुनिया में अगर हैं तो बीमारी भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हमको पकड़ सकता है, तो उस दुनिया में होने की वजह से हमारी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा जो नुकसान हम खुद कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे फाइनेंशियल नुकसान, तो रब आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं करना चाहता। वो भी सिचुएशन में अंदर कभी नुकसान होता है कभी नहीं होती, तो वो कोई एक्चुअली ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है। इसके बीच के इम्तिहान स्पेशली मुझ पे और या आप पर नहीं डाले जाते, ये हम जिस इलाके में जिस इन्वायरमेंट में होते हैं उसी हिसाब से इम्तिहान होते हैं। एक इन्वायरमेंट में सबको चिकन पॉक्स हो रहा है, वहाँ पे आपको बेरी बेरी वाली दूसरी बीमारी ताउन नहीं हो सकती, क्योंकि सबको एक हो रही है तो वही हो रही होगी सबको, उस एनवायरनमेंट में उस एरिया में हम हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हम पे ऑपरेट होती हैं। तो अगर हम इनको चीज़ों को इस तरह देखेंगे तो आप खुदा को भी इस मुक्त करें इस बात से कि उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया या लोगों ने भी आपके साथ। आपको अच्छे बड़े बड़े लोग दिखाते हैं सब्ज़ बाग, हम मुंह उठा के वो सब्ज़ बाग ख़रीद लेते हैं, बड़े वजह से इस बैंक ये पैसा आपको इतने देंगे तो आपको इतने परसेंट मिलेगा, कुछ अरसे बाद वो गायब हो जाते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं वो कंपनी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे। आपने वो झूठ ख़रीदा, उन्होंने झूठ बेचा, आपने झूठ ख़रीदा, उस झूठ की सज़ा में आपको नुकसान हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप झूठ का धंधा करेंगे ही नहीं, जब आप झूठों से कारोबार ही नहीं करेंगे, झूठे और झूठे आपको अच्छा समझें, आपसे प्यार करें, आपकी तारीफ़ें करें, जब आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, खुद पे काम करेंगे, तो कोई बंदा आपको इस तरह धोखा भी नहीं दे पाएगा। तरस गए हम पिछले 10 साल से किसी धोखे को, और जो अगर और जिनको लगता भी है उन्होंने हमें धोखा दिया किसी बात में वो भी झल्ले हैं, उनको नहीं पता, हमें पहले से पता था, इसीलिए इतना बड़ा डैमेज नहीं कर पाया। तो ये बातें इंसान जब इंसान बनने की कोशिश करेगा तो उसको ये सब पता होता है। बेवकूफ़ इंसान जो होता है, अपने आप को धोखा देने वाला इंसान, खुद से झूठ बोलने वाला इंसान, रेड फ्लैग्स ना देख सकने वाला इंसान, रियलिटी में ना रहने वाला इंसान, अपने लिए भी मुसीबत है, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। मेहरबान, रेडियो आजाद जी। अस्सलाम
1: वालेकुम आजाद लाला।
0: वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जिस कॉइन में सलाम किया हमने उसी कॉइन में आपको जवाब दिया कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: कौन सा कॉइन चल रहा है? डॉलर्स में बात करती हैं कि आप पाउंड्स में?
1: पाउंड्स में।
0: क्योंकि पाउंड महंगा है इसलिए अच्छा मुझे याद ही नहीं रहता, हमें जो डॉलर मिल रहे हैं हमारा ध्यान इसके ऊपर है।
1: आप किसी भी कॉइन में बात कर लें आजाद अल्लाह, बस आपकी बात तो बात ही अलग है उसकी।
0: हम आपकी बात को कॉइन ही करके ना कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे।
1: तो आजाद अल्लाह भी जब अफशां बीबी जैसे आती हैं, यूं लगता है जैसे बस एनर्जी छा गई हो पूरी जगह से, माशाल्लाह से।
0: उसके बाद वो बेचारे भी, हाँ उसके बाद उन्होंने भी कहा बीच में, मैं 5-10 मिनट से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा सांस 5-10 मिनट क्या, मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सांस कब लेंगे बीच में, मैं पानी पी लेता हूँ इसी बहाने।
1: अजादला हम इनको अफशा कहते हैं, और ये अफशा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अजादला हमारे साथ हमारी कॉलीग होती थी वो इरेनियन थी, तो उनको हम उनका नाम अफशा था, हम उनको अफशा बुलाते थे, तो वो बहुत माइंड करती, कहती ये अफशा नहीं है, कहते अफशान है ये।
0: इनको आप अफशा ही कह लें काफी है, क्योंकि और ज्यादा ना वो जॉन कहने वाले और ये ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना, ये कई लोग जो होते हैं, आपको एक और कॉम्प्लेक्स बताऊं मैं, जिन लोगों को आप अंकल या आंटियां कहते हैं ना, उनकी जान और रूह निकल जाती है ना, वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी एज को लेके, ठीक है, बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसी तरह जिन लोगों का नाम होता है ना कोई, कोई भी।

0: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum. My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton. Please keep listening to Inspire FM.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.